अच्छी भाई, भाई आज तो नेटवर्क काम नहीं करता, बस बहुत मुश्किल से शो सुनती हूँ, बार बार कट जाते हैं। आई मनाल, यू आर राइट मनाल से मखोर बिल्कुल नेटवर्क डेरा जो तो मसला दुकाना ब्यावर्ती के ने जो गोरा मोत देने क्रीजी बुटी वो कर जाना ना अचे गुरु ची शाश कुल दीप गाड़ा पसी ज्योतिषी और मोत देने क्रीजी मोत देने क्रीजी बुटी वो कर जाना मोत देने टेंशन बुटी वो कर जाना और तदाएं ठीक।

0: जे नायब हान कना सबेर हान बांदे ग्रान कना आर जे नायब हान कना सबेर हान बांदे ग्रान कना देसारा ख्वाशी यारानी ओबल बांदे ग्रान कना
1: ग्रानो का दर्दानी मिनावालो कोशिश करो चपारु ग्राम दस्तासो ख्वाखे मुताबिक और दस्तासो माइंड मुताबिक पेश को ओको आवाग खबर है पके ओको को मिचे दस्तासो मफादो दस्तासो फायदे दस्तासो खुला दस्तासो शो ताका वाला खबर है आओ देखो शली का वाला खबर वगैरह बस समरम दुजमा खोगे मशरान है मशरान चाहो द परम लक्षण सब कमेंशन को चाहो पखलो बांधे खंडारा शिव जरूरी रात द्वारा शिव पाक रबल जाते टूल राता आबाद आओ आबादे खुशाल आओ खुशाल रता लरी अमीना उस सम अमीना شکریہ

0: जाने तमन्ना जाने जहाँ मिले आपको तफरी,
1: जहाँ मिले आपको मालूमात
0: और जहाँ गूंजे सिर्फ आपकी आवाज, दिन हो या रात
1: रेडियो मन 88.4 करक हमेशा आपके साथ।
0: रेडियो मन 88.4 करक, अपनी आवाज अपनी पहचान।

0: वाह जबरदस्त माशाल्लाह खुरकी में सुख तो किन जी ना सरंगे आवाज दे काट से सुख खबर के तो किम जी ना
1: मारे
0: अरमान फ्रॉम वजीरिस्तान मारे अरमान तो प्रोग्राम शेयर कलाई भी स्टडी मार्शी भी वेलकम ही नहीं गई तो ये डेर

मैं हूँ अस्मा नूर वजीर फ्रॉम मंगल मेला। मैंने अपने बालों के लिए कई शैम्पू आजमाए लेकिन कोई रिजल्ट नहीं मिला। फिर मैंने अमन रेडियो करक पर इकराम मामू का प्रोग्राम सुना। उन्होंने एश्मा आनियन शैम्पू के बारे में बात की। जब मैंने मंगवाया और इस्तेमाल किया, माशाल्लाह उसने मुझे कमाल का रिजल्ट दिया। मैं सब बहन भाइयों को ये मशवरा देती हूँ कि अगर आप लोग अपने बाल मजबूत और सेहतमंद बनाना चाहते हो तो आज ही अपने करीबी दुकानदार से एश्मा आनियन शैम्पू मंगवाए। एश्मा आनियन शैम्पू सेहतमंद और चमक

खुशखबरी खुशखबरी, हुजीफा कंपनी वाला शिफा तेल का बड़ा दावा। सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में शिफा तेल का जवाब आपको नहीं मिलेगा। शिफा तेल अरब ममालिक, यूरोपी ममालिक, मलेशिया, चाइना वगैरह में एक्सपोर्ट किए जाते हैं। शिफा तेल पुराने गंजेपन के लिए नहीं बल्कि अभी गंजे हो या गंजे हो रहे हो तो शिफा तेल के इस्तेमाल से बाल गिरना बंद हो जाएंगे, नए बाल उगना शुरू हो जाएंगे, बालों को गन्ना लंबा करता है, खारिश खुश्की सिकरी खत्म, मर्द औरत दोनों के लिए यकसा मुफीद है। हुजीफा कंपनी शिफा तेल, पिशावर, बन्नू, लकी, करक, डीआई खान, खैबर पख्तूनख्वा, पिंडी, इस्लामाबाद के अक्सर जनरल स्टोर और बेकरियों में दस्तियाब है। नवी दरियाफ शवी ददवाथुर निशान वाला हुजीफा कंपनी शिफा तेल, चिसड़ाए वख्तिनाए गंजाए नवी, ओस ओस गंजे शवी भी याद सर वेख्तान गुरजीगी, नो अगा सड़ाई ची सो रजे शिफा तेल पपल सरबा ने मालश की, नो दद पसरबो दुबारा नवी विश्तान पैदाशी। शिफा तेल विश्तान गुरजवल बंदवी, विख्तान गण और उजद कवी, दे सर खारश खुशकी पीना पखा हम खत्म कवी, जनना मर्दना द्वाड़ो दपारा बराबर फायदेमंद। मजीद मालूमातो दपारा पदे नंबर राबिता कवले छे 0331 397 3636।

आप सुन रहे हैं रेडियो मन 88.4 करक, जहां मुसिकी मालूमात, इस्लामिक प्रोग्राम और एंटरटेनमेंट शो हमेशा आपके साथ रहते हैं। रेडियो मन 88.4 करक, आपकी आवाज़, आपका एहसास।

0: Τώρα είμαστε εμεί οι Δάρτοβιε για πάντα σαπάρσι, δεν τάσα έχω χαστηθεί.
1: Για να τίσε τα ρεχανά από σαπάρ και έχουμε ίσμα washing powder, έχω χαστηθεί.
2: Έσμα washing powder,
0: μάρα είμαι ζή μόχο κορτά, national or multinational, καπνέιβολ washing powder, βορειβή. Κούρσε αξάρ γυλάρ τα κίζε τα σαράγγε σαρά προβρέ.
1: Δελκολ τα ρεχανά, τα γυλεύε χάρβα τε μοτάχα κούρσε κραλέ. Χωτσε καλά να με κούρτα ίσμα washing powder, βορειβή σε ρικρέτη, ο στόλ κούρβαλα να χωσούλτη.
0: अच्छा है मिस जी ब्याह कुर्ता जहर सरवरो उदार तो ये या जे पर इश्मा वॉशिंग पाउडर से सदा से खास खासियत थी
1: तारे खाना इश्मा वॉशिंग पाउडर खास खासियत दागा दी जे कपड़े सब युक्सले को जोर ना जोर दाग पर गारंटी सर खत्म करी जाखर सजुत की ओ दनोर सरफे पर इस्बात इश्मा वॉशिंग पाउडर काम इस्तेमाल जी ओ बला खबर दा कपड़े सब ही पवा लोसीना न खर पवी
0: शाम मिस जी जे दम रक्षला रिजल्ट ये दाई दार तो ये दाओ मोता चेरता मिला वी जी
1: तारे खाना दाओ तो दप बने গলছে আন্দ্রন লাকি গেট জানজেবে গালে পশে মার্কেটে দেশমা মেন ডিস্ট্রিবিউটর হাফেজ ইরসেব সারাউদার তে মেলাবিজি।

हाँ जी, सलाम अलैकुम माय स्वीट एंड क्यूट माय फेवरेट आरजे हाजी नमलाहाना ब्रो, संगे स्वीट ब्रो, आई लाइक योर शो, आई लाइक योर शो, आई लाइक योर स्वीट क्यूट अमेजिंग वॉइस। ओके बिम जलमी रेडियो वन नौशेरा, एंड इज मी जुबैदा नूर एंड सुलेमा नूर कवल नूर फ्रॉम ब्यूटीफुल नौशेरा पिशावर बड़े बेरे जी औरंगजेब मार्केट जरा बिल्कुल ख्वाब अख्वाद राशिदी बगोर के तमाम इसमें प्रोडक्ट मिला हुई यहाँ अकोल खटक बाजार की वाहिद कॉस्मेटिक स्टोर दे तमाम बड़ों को सर मिला हुई डेरे जाते मरण। थैंक यू खुशहाल उसी लगा दे जी जी जी जी बस ना दोनों डेर जाते मरना लिशकी लिशी हाँ सही था अडेर ज्यादा ना तोहीद की अम्मी सामने की नाम भाई जाना शो दे और हाँ भाई जाना शो दे नाइस हाँ और वॉइस दी होम क्लियर है जिलमी रेडियो बने अडेर ज्यादा मरा ना जमा खुर खुशहाल हो जाए। जमील खान लंडीवा वॉइस इस्लाम अलैकुम माशाल्लाह इंग्लिश में जगड़े हाँ वॉइस अब नेट बने प्रोग्राम और अडेर ज्यादा मरा ना दास जो जी जी जी जी जी जी आवाज ओलो बरा जी तुम दोनों अडेर ज्यादा मरा ना हाँ जमील खान लंडीवा पलंडीवा की तुम खुएं जिन्होंने जमा आवाज हो रही जमील खान लंडीवा तमाम प्रोडक्ट मिलाई हुई शाज जल की मारोत आवाज सलामुन में कबूल का वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू आवाज ओके दे पटोल रडवान वाले फायका कायनात फातिमा लंडीवा सलाम और कम मलाल फरियादी मानूर लाइबा फलवाशीता और वसीम मलाल फरियादी वाजी हेलो हाय हाउ आर यू शो दिस वेरी लिश्की पश्की एंड मोस्ट वेलकम नाइट शो आई मलाल।

ओके हाउ आर यू, माय नेम इज लुबना, मैं खामोश लिसनर हूँ, आपका प्रोग्राम सुनता हूँ, सुनती हूँ, अच्छा सुनती हूँ, इश्मानूर बाबोजोना, वाई गोल्ड ब्लीज यूज कॉम फिशल यूज कॉम मुल्तानी।

0: रहे हैं FM 88.4 अमन रेडियो करण।
1: या रात खुशी हो या तन्हाई, हर वक्त एक आवाज साथ हो। रेडियो अमन 88.4 कारक आपके हर लम्हे का साथी।
2: द करक अनूर शो खल कु द पारा द खुशाले खबर उस्तासो पाखपल खार करक की द डीरो गण बीमारो लका शुगर अरकुन निसा पालिज जोड़न बीमारी गुर्दों की कहानी त्रिख की कहानी बेऔलादी बवासीर मैदी जख्म ब्लड प्रेशर लुगन लगे दिल द वजूद सुस्ती प्रास्टेट दमला दर्द द जोड़न बीमारी और द जनानो नारिनो नूर पट औखकार बीमारों पशमुल द हर मर्ज इलाज पा तसले सरा दियो तकड़ा काबिल और तजुर्बाकार डॉक्टर सईद जाकिर शाह बाचा से अपना कवली शे सूखची डी चिमिस बी चिमिस आर चिम्पी और नूर सनदुना तरला सकून की द पेखवर मशहूर होम्यो फिजिशियन दे द नूर मालूम द पारा पा दी नंबर राबित उकड़े 0331-52-65-340 पता याद साथे पिशावर हेल्थ मेडिकल सेंटर मलिक सिंजीत मखामख सिविक प्लाजा जेल चौक खरग।